कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट केपी में एमरजेंसी लागू करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। अपोज़िशन जो एहतजाज, हुकूमत ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी केपी में एमरजेंसी बाबति ठहराउ क़ौमी असेंबली में पेश कयो, जेको अक्सरियत राय सां मंज़ूर कयो वियो। अपोज़िशन ठहराउ ख़िलाफ़ ऐवान में एहतजाज कंदे नारेबाज़ी कई। केपी में गवर्नर राव जी मंज़ूरी लाइ पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास अॼु थींदो। तारिक़ फज़ल चयो त पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास अॼु सुबुह जो 11 वॻे थींदो।
1: ख़ैबर पख़्तूनख़्वा की हुकूमत पे, पीटीआई की हुकूमत पे, पीटीआई ने खुद एक सियासी खुदकुश हमला किया है। आप वफ़ाक़ी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाए, आप सदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो हालात बने हैं सियासी, कानूनी और आईनी, वो पीटीआई की खास तौर पे उनकी सूबाई की आदत, उसमें उनका अहम किरदार है। एक बार फिर अपना हाथ वजीर आजम साहब को, हम सब अपना हाथ ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की क्यादत को, ऑपोजिशन की सियासी जमातों से आगे बढ़ाते हैं कि आए हम बातचीत करें।
0: बिलावल भुट्टो जरदारी केपी में गवर्नर राज जो जिम्मेवार पीटीआई के करार दई छो, हुकूमत या अपोजिशन के गाल करण की तजवीज भी दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत एमरजेंसी वो एटमी बम इस्तेमाल करपोजिशन गाल क्यों, अपोजिशन के मञणो पवंदो त पीटीआई हुकूमत पाण सियासी आपघाती हमलो कयो। सदर आयन मूजिब केपी में एमरजेंसी गवर्नर राज लगायो, फैसलो हमेशा लाइ न आहे। हुकूमत अपोजिशन मामले ते वेही ॿीहर ॻाल्हियूं कनि, हालतूं बहितर थियूं त वज़ीर आज़म खे एमरजेंसी ख़तमु करण जी दरख़्वास्त कंदुसि। सेउने अंसर पाकिस्तान जे सियासी सियासत में मुदाख़लत करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दी जी सूरत में भारत जो ऑपरेशन सिंदूर अॼु बि जारी आहे। भारत खां पाक फ़ौज हथां तबाह थियल 6 जहाज हज़म न थी रहिया आहिनि। सभिनी खे मुतहद थी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ विहणो पवंदो। क़ौमी असेंबली में अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई हुकूमत खां केपी में खयल क़दम वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। क़ौमी असेंबली खे ख़िताब कंदे महमूद ख़ान अचकज़ई चयो त हुकूमत जा क़दम गैर आइनी आहिनि, वापसि वरिता वञनि। बैरिस्टर गौर चयो त हुकूमत जमहूरियत ते राताओ हयो आहे, हुकूमत 58(2)(b) खे ॿीहर ज़िंदा कयो आहे, अवां चूंडियल हुकूमत खे घर भेड़ो कयो, समूरा नोटिफिकेशन रद्द कयूं था, समूरे पाकिस्तान खे गैर फाल कयो वियो आहे।
1: बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद 2.5 घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं, और सरहद पार से भी जो दारंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए, और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और बिलखसूस जो पिछले 1 साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड, वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
0: केपी में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज जो फ़ैसिलो सोची समझी कयो वियो। सोहेल आफरी जे वॾे वज़ीर थियण बैदि सूरत हाल मुल्की सलामती खे ख़तरे ताईं पहुची वई हुई। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ चयो आहे त बार बार निशानदेही बावजूदि केपी हुकूमत ॻाल्हि न मञी। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई हुकूमती दौर में जेको कुझु कयो सभु यादि आहे, केपी में गवर्नर राज खां सवाइ ॿियो को बि ऑप्शन न हो। खुदा जे वास्ते के पी सा गड सिंध ते भी नजर रखो पीटीआई वट फैसले के गलत साबित करण लाए को दलील ना है कौमी असेंबली में गलाएं एम क्यू एम अगवान फारूक सत्तार चयो त हुकूमत के पी में गवर्नर राज फैसलो दिल सा ना है कयो जेका नजर के पी ते आए सागी सिंध ते भी रखी वञे।

पीटीआई केपी में इमरजेंसी है। गवर्नर राज के पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छो। चेयरमैन बैरस गौर के तरफा वकील अली जमान दरख्वास्त दाखिल कराई। बैरस गौर है तो गवर्नर राज इमरजेंसी के पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छो है। उम्मीद है अदालत सूबे में जमहूरियत बहाल कंदी। रूसी घरो वजीर पारा GHQ जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बतरफ लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल रूस से मुख्तलिफ शोबन के सहकार के हथी दियणवारे आजम जो अर्जाव। रूसी घरो वजीर पारा दहशतगर्दी खिलाफ वेड़ में पाकिस्तान के किरदार की सराह कई। पाकिस्तान के दौरे ते मौजूद उमानी परदे वजीर सैयद बदर बिन हमाद जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। बतरफन लागापन समेत खिते की सूरताल से गाल। बिन्हीं अगवाड़न जो व्यापारी सहकार के हथी दियण ते इतफाक। खिते की सूरताल से भी सहकार जारी रखण वाले आजम जो अर्जाव। रूसी मुलाकात कई। बतरफन लागापन व्यापारी सहकार के वधाइण ते गाल कयूं वयूं। खिते में जारी तकरार जो सफारती हल कढ़ण ते जोर भरियो वयो। वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में एक भेरो बीहर इजाफो करे छो। डीजल की कीमत मामूली लात। पेट्रोल की कीमत में वधीक एक रुपयो वी पैसा इजाफो। डीजल के मुल में मामूली 19 पैसा फी लीटर तेल लात कई वही। पेट्रोलियम शयों की कीमत में फेरफार बद। पेट्रोल जो फी लीटर 393.86 रुपया डीजल जो फी लीटर 396.65 रुपया फी लीटर मुकरर। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी किया नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोल डीजल जो नई कीमत 15 अक्टूबर लाए होंगी।

0: वड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह की क्यादत में सिंध के आला सतही वफद की चीन में ओबी सूबे के आला क्यादत से मुलाकात। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ओबी के गवर्नर सा मुलाकात में शर्जिल इनाम महमूद जाम खान छोरो मोहम्मद बख्श मर बया शरीक थे। सिंध ओबी विच में ज़राइत आई टी तलीम फनी तरबियत व्यापार सड़ककारी इक्सादी सहकार उधारण से गाल मुराद अली शाह तो ओबी जो यूनिवर्सिटियों तहकीकी इदारा जदीद सनअतू सिंध ला अहम मौका फराहम कर सकन थी। गवर्नर ओबी वट जदीद पैदावार निज़ाम मौजूद है जो सिंध से गजल मनसूब लाए अहम मौका फराहम कर सके तो। वफाकी आईनी अदालत 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बुशरा बीबी की सजा मोतली वारी दरख्वास्त रद्द कर छी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ब रुकनी बेंच दरख्वास्त बुधनी कई। वकील सलमान सफदर दलील ईंदे औरत लाए अदालत सदा नरम रवियो रखो है। बुशरा बीबी की भी सजा मुअत्तल कई वे। अदालत वकील जा दलील बुधन बाद बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली वारी दरख्वास्त रद्द कर छी।
1: अदिया छो तो सऊदी अरब आ एजाज वठाई बधाने की पहले कोशिश कई जो जवाब दिनम कि बगैर कें दूह गिरफ्तार नींदम सिर्फ एजाज वठाणी जो अना के तस्किल लाए हो कि बधन की कोशिश कई हुई जैको इनकारी थियम। मुझी गैर मौजूदगी में मुझी भेण के पावर ऑफ ब्लड रिलेटिव हुई उन्हीं वो साइन किया जैमें उ वजहों सब लिखल हुई कि एजाज खतो अस तंग करें बाबा चवन पलान है उधर पुराना कौन थी मुंह डींदा से
0: जखराणी जो भाव खालिद जखराणी भेण कराची में गिरफ्तार। कराची पुलिस खालिद जखराणी संदस भेण गनमैन के डिफेंस वाले घर में गिरफ्तार कयो। दखण पुलिस मौजूद गिरफ्तार मंशात फिरोज निशानदेही ते कार्रवाई कई। मजामत चार जन के गिरफ्तार किया है। आजाद जखराणी है एजाज जखराणी दुश्मनी से लही आयो है। खालिद भेण के गिरफ्तार किया है। एजाज के बुधायण चाहें तो पलांद पुराना नायन थींदा। पीपीएमएन एजाज जखराणी है रात की ऊंदाई में मुझे खानदान घर से छापो हो वो। पुलिस जो चवण है गिरफ्तार जवाबदार की निशानदेही से छापो हो। छापे दौरान चादर चौदीवारी जो तकदस पायमाल किया वो। पंजे भाव खां लातलुकी जो ऐलान कर चुको आया पर ही असो खानदानी घर है। पुलिस के छापे बाबत पंजे खदशन खां घरू वजीर आईजी सिंध के आगाह कर छो है। छापे की जांच कराए जिम्मेवार खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वे। घरू मामलन बाबत कमेटी के चेयरपर्सन फरियाल टालपुर पारा एजाज जाखराणी के घर से छापे जो नोटिस। आईजी सिंध का रिपोर्ट तलब करे वरती। फरियाल टालपुर वाक्य की जांच कर हकीकतू सामू आदि वन।

सिंधाई कोर्ट ऐं कमिश्नर कराच जे मनानामे बावजूद मलीर में रेती बजरी जी चोरी जारी। पुलिस ऐं माइंस एंड मिनरल खातो रेती बजरी चोरी जो सरपरस्त बणियल। मलीर नदी, खार नदी, सखण नदी मां रेती ऐं बजरी जी गैरकानूनी चोरी अरूज ते पहुतल। सवें डपर ऐं ट्रकूं क़ीमती रेती ऐं बजरी चोरी में मसरूफ़। नदे में इंतज़ामिया मुकमल हिसेदार बणियल। हैवी मशीनरी जे इस्तेमाल सबबि ज़रई ज़मीन खे सख़्त नुक़सान। पाणी जी सतह वधीक हेठि थी वई। रहवासियुनि जो चवणु आहे त रोज़ाने करोड़नि रुपियनि जी रेती बजरी चोरी कई पई वञे, जंहिं सां मलीर जो ग्रीन बेल्ट तबाह थी वियो आहे। वॾो वज़ीराय जी सिंध ऐं डी जी रेंजर्स नोटिस वठी माफ़िया ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कनि।

सिंध जे खोराक खाते करोड़नि रुपियनि जे करप्शन कंदड़ कामुरनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ करे छॾियो। कुझु मुलाज़िमनि खे जबरी रिटायरमेंट ऐं हेठियनि उहिदे ते बदिली ऐं सालियाने इंक्रीमेंट्स रोकण जूं सज़ाऊं ॾिनियूं वयूं। ताड़काणे जो फूड इंस्पेक्टर आरिफ हुसैन अबड़ो 70 करोड़ 4 लख रुपियनि जो इल्ज़ाम साबित थियण ते बरतरफ़। खैरपुर जो फूड सुपरवाइज़र तालिब हुसैन चन्ना 27 करोड़ 24 लख रुपियनि जो इल्ज़ाम साबित थियण ते नौकरी मां बरतरफ़। थरपारकर जो फूड सुपरवाइज़र करप्शन कर्शन लाल लोहाणो 43 करोड़ 68 लख रुपियनि जे करप्शन साबित थियण ते नौकरी मां बरतरफ़। ऐं अॻूणे डी एफ सी थरपारकर अब्दुल सत्तार मेमूण खे मातहत अमले जी निगरानी में नाकामी ते जबरी रिटायरमेंट जी सज़ा ॾिनी वई।

तलोक पे लाशत सेक्टर सी 11 में गरमा पीरसन मोहम्मद यामीन संदस जाल नफीस अख्तर जा लाश मिला। पुलिस मौजूद मकतुल जाल मुड़स कुछ अरसो अग कैनेडा का पाकिस्तान आया हुआ बिन्हीं के तेज धार औजार से कत्ल किया है जांच कर रहा हूं। गुलशन नदी के फलकनाथ सोसाइटी में घर में पंजन भातुन जा लाश हथ अचण वाले वाक्य की जांच कमेटी कायम। डीएसपी बिन कासिम डीएसपी मलीर सिटी इंचार्ज आईटीआई एसएचओ टीम जो हिस्सो हुंदा। पुलिस जरन मौजूद मोबाइल फोन पिस्तौल फॉरेंसिक जांच लाए मोकलिया वेंदा। शाहजेब के वेझन दोस्तन जा बयान रिकॉर्ड कया वेंदा। ताजो कुछ दोस्तन शाहजेब से दोस्ती छो खत्म कई हुई शाहजेब घर कद खां खरीद कयो उन बाबत भी जांच कई वेंदी। नवाब अली मोहम्मद के कच्चे वाले इलाके में हथियार बदन की फायरिंग बजना कतुल अलियाबाद थाने के हद में हथियार बदन फायरिंग कर बिन जणन के कतुल कयो। पुलिस सेवा मकतूलन की सुणप निसार पली गुलजार माछी के नालन से थी है जांच जारी है।

0: ऐं फैज़गंज वेझो पका चांग में जवाबदार संगावती तंगरार तां कुआड़ियुनि जा वार करे टिन ॼणनि खे मेरलिंग करे छॾियो। हैदरी पाड़े में जवाबदार लोड रक्षा ते वेठल टिन पोरियतुनि अमीर हुसैन मुबीन ऐं यामीन चांग खे ज़ख़्मी कयो। ज़ख़्मियुनि खे गड़ती वारी हालत में नवाब शाह जे सिविल मुंतकिल कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
3: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है।

Dan

क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट केपीअ में एमरजेंसी लागू करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी अपोज़िशन जो एहतिजाज। हुकूमत ख़िलाफ़ नारेबाज़ी वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरीअ केपीअ में एमरजेंसी बाबति ठहराउ क़ौमी असेंबलीअ में पेश कयो, जेको अक्सरियत राय सां मंज़ूर कयो वियो। अपोज़िशन ठहराउ ख़िलाफ़ ऐवान में एहतिजाज कंदे नारेबाज़ी कई। केपीअ में गवर्नर राज जी मंज़ूरीअ लाइ पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास अॼु थींदो। तारिक़ फज़ल चौधरीअ चयो त पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास अॼु सुबुह जो 11 वॻे थींदो।

गुलशन हदीस जे फलकनाथ सोसाइटी में घर मां पंज भातियुनि जा लाश हथ अचण वारे वाके जी जांच कमेटी कायम। डीएसपी बिन कासिम, डीएसपी मलीर सिटी इंचार्ज आईटी ऐं ॿ एसएचओ टीम जो हिसो हूंदा। पुलिस ज़रियनि मुझ मोबाइल फोन ऐं पिस्तौल फॉरेंसिक जांच लाइ मोकिलिया वेंदा। शाज़ेब जे वेझनि दोस्तनि जा बि बयान रिकॉर्ड कया वेंदा। ताज़ो कुझु दोस्तनि शाज़ेब सां दोस्ती छो ख़तमु कई हुई, शाज़ेब घर कॾहिं ऐं कंहिंखां ख़रीद कयो, हुन बाबति बि जांच कई वेंदी।

नवाब वली मोहम्मद के कच्चे वारे इलाके में हथियारबंद की फायरिंग बजना कत्ल अलीबाद थाने के हद में हथियारबंद फायरिंग कर बिन जन के कत्ल कयो। पुलिस है मकतूल की सुणप निसार पली और गुलजार माशी के नाल से थी है। जांच जारी है।

ऐं फेसगंज वेझो पका चांग में जवाबदारनि संगावती तकरार तां कुहाड़नि जा वार करे टिनि ॼणनि खे मरणिंग करे छॾियो। हैदरी पाड़े में जवाबदारनि लोडर रक्षा ते वेठल टिन पोरियतन अमीर हुसैन मुबीन ऐं यामीन चांग खे ज़ख़्मी कयो। ज़ख़्मियुनि खे ॻणितीअ जोॻी हालति में नवाब शाह जी सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही है हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट
6: हर चप्पा हर गोशा
7: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

परमेश्वर जे राज में कॾहिं वॾेरी हुयासीं वॾेरी हुयासीं झूले नमा में नुकरे।

0: ज़िंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

केपीए में इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज जी मंज़ूरी लाइ पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास 11 वॻे थी रहियो आहे। 6 नुकाती एजेंडा जारी। इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज बाबति सदारती फरमान ऐवान में पेश कयो वेंदो। आइन जे आर्टिकल 232 तहत इमरजेंसी ऐं 234 तहत गवर्नर राज जी मंज़ूरी लाइ धार ठहराउ पेश कयो वेंदो। सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में केपीए में गवर्नर राज ऐं इमरजेंसी जी मंज़ूरी ॾेई चुकी आहे।

सिंध हुकूमत कणक रिलीज पॉलिसी जारी करे छॾी। अॼु खां फ्लोर मिल्स ऐं अटे चकिन खे 2.5 मण वारी बोरी 1,250 रुपियनि में जारी करण जो ऐलान। पहिरें मरहले में पुराणी कणक जारी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सेप्टेम्बर खां घटि में घटि 6 महीननि ताईं फाल रहंदड़ फ्लोर मिल्स ऐं अटे चकिन खे ई कणक मिली सघंदी। ओधर ते कणक जारी करण ते पाबंदी। जस्टिस मुनीब अख़्तर वक़्ती चीफ जस्टिस जे उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो। जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस मुनीब अख़्तर खां हलफ़ खणायो। चीफ जस्टिस यया आफरीदी निजी दौरे ते इंग्लैंड वियल, 21 अक्टूबर ते वापसि ईंदो।

मीरपुर बुरड़ो जे ॻोठ अला वधायो चनो जे प्राइमरी स्कूल में ॿिनि महीननि खां उस्ताद मुक़रर न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज ॻोठाणनि चयो आहे त उस्ताद जे रिटायर थियण खां पोइ स्कूल ॿिनि महीननि खां बंदि पियल आहे। ॿारनि जी तालीम तबाह पई थिए, स्कूल में सहूलियतुनि जी बि खोट आहे। जल्द उस्ताद मुक़रर करे ॿारनि जी तालीम तबाह थियण खां बचाई वञे। ऐं बख्शापुर भरिसां घर में चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ामत ते घर धणी ज़ख़्मी, टे चोर बि सोघा। ॻोठ भुटो में चोरीअ दौरान मज़ामत ते गोलियूं लॻण सबबि घर धणी बदल भुटो ज़ख़्मी थी पियो। खेसि गणती जोगी हालत में रहीम यार खान इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। चोरी वारदात दौरान भाॻियनि टिनि चोरनि खे सोघो करे पुलिस हवाले करे छॾियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
4: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: जो शहर जो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
7: GFM 90.8

0: करते हैं, लोगों के दिलों को चाहत से पता करते
1: हैं, चाहत से पता करते हैं, लोगों के दिलों को चाहत से पता करते हैं, लोगों के दिलों को हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, you are showing into your radio FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट से हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज जी रुखसार सिंध की आवाज। जहाँ जहाँ भी मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है, पूरी पूरी एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपरवाइज प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स, सुपरवाइज प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स, जो की आपको बना रहे हैं बेहद खूबसूरत, बे इंतहा खूबसूरत, बेहद हसीन। अगर आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जाजिब नजर लगना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सो डैट आप यूज करेंगे सुपरवाइज के प्रोडक्ट, और कौन से प्रोडक्ट हैं, क्यों यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में वक्त की बात करेंगे, तो जी वक्त हुआ जाता है 11:16, जो कि पाकिस्तान का मेरा वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है, और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अल्लाह अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बगल से खुदा खैरियत मौजूद और तो खुदा खैरियत मतलू,

सालगिरह है उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी बर्थडे ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा जिन गलियों और चबारों शहरों शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगल सी आया नुसर बिस्मिल्लाह बाजार शाओ निहाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है.

तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम का पहला गाना हम इंक्लूड करेंगे जो कि होगा बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल. तो इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, इसी के साथ हम आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स.

फिर प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह के कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है डायरेक्ट www.facebook.com/GFM Larkana FM 88.8 एंड GFM 88, ठीक है. तो ये दोनों पेजेस हैं जहाँ पे आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग ईजिली मिल जाएगी. तो यहाँ पे आके आप ऑडियो स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं और वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं और सुपरवाइज प्रोडक्ट्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. और जब आप लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग पे आएंगे तो आपको सुपरवाइज के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे, ठीक है. इसके अलावा जी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. और इसके अलावा सखर और लाड़काना वालों के लिए सुपरवाइज का हेल्पलाइन नंबर है 03147745562. लाड़काना नहीं सॉरी हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
4: Super White!
5: Helpline number, Hyderabad region 0370-256-8321 or helpline number, Sakhar region 0314-775-4462.
6: की खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: ऐं बेरोनो की स्किन हण इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

How did you welcome back once again? I'm Sunil Zindagi Gulzar here, sponsored by Super White Products by Exa Cosmetics. Super White Products ki janib se ye khoobsurat safar jo ki aap tak pahunchaya ja raha hai, aur aap maujood hain, hum maujood hain, hum sab maujood hain ek dusre ke saath. And Super White ki products bhi, aur Super White ki products ke liye helpline number sabse pehle aap note down kar lo, uske baad main products batana shuru karungi. Theek hai, to helpline number hai Super White walon ka sakhar aur ladkana region ke liye, that is 0314775462. theek hai, at least aap logon ne is pe call zarur karni hai agar aapko kisi bhi koi bhi product ki malumat leni hai, agar aapko ye janna hai ki sakhar aur ladkana mein kaun si shop pe available hai, to exact hum usi shop pe jaye. theek hai, ye bhi aap pata kar sakte hain. Iske ilawa aap call karke apni jo desired product hai uske bare mein jaan sakte hain, ya agar aapko program acha lagta hai, aapne number note down kiya hai mera program sunke, tab bhi aap call kar sakte hain is number pe. theek hai, aur jo Hyderabad wala number hai same us pe bhi isi tarike se aap log call kar sakte hain. To Hyderabad wala jo number hai, Hyderabad walon ke liye Mumtaz Hasan Khan ka number, to unka number aap log note down kar le, jahan pe available na ho Hyderabad mein wahan pe products ko available करवा ले. और इसके अलावा कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे दें, अगर प्रोडक्ट्स के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो तो वो भी ले लें. ठीक है, तो नंबर है जी हैदराबाद वालों के लिए 0370256832. और सुपर वाई के प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट और बहुत खूबसूरत और बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, करने चाहिए. क्योंकि सुपर वाई के की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए बनाए गए हैं. सो सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, इसके अलावा सुपर वाइट की फेस वॉशेज जिसमें विटामिन सी फेस वॉश, और इसके अलावा जी स्ट्रॉबेरी फेस वॉश आता है सुपर वाइट वालों का, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश, इसके अलावा सुपर वाइट का राइस फेस वॉश, और इनके सोप्स भी आते हैं. ठीक है, सुपर वाइट का राइस सोप आता है, ऑयल कंट्रोल सोप आता है, इसके अलावा जी सुपर वाइट वालों का ऑयल कंट्रोल सोप भी आता है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्ने क्रीम आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रैगल क्रीम भी आती है, और सबसे मजे की चीज जो है इनका ब्यूटी सीरम बूस्टर, और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर के साथ साथ सुपर वाइट सीरम भी आता है जी, सुपर वाइट राइस सीरम. ठीक है, सुपर वाइट राइस सीरम भी आता है और सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर भी आता है. अब ये सब क्या है वो आपको मैं बताती जाऊंगी. ठीक है, तो सुपर वाइट के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसमें सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम तमाम उन लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप ऑयली है, और स्किन टाइप ऑयली होने के साथ साथ उनके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं और कलर बिल्कुल डल है, कॉम्प्लेक्शन डाउन है, अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, गोरा चिट्टा रंग करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिल रही है जो कि बिना साइड इफेक्ट चिट्टा गोरा रंग कर दे और खूबसूरत बना दे. अब सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि आपके इन तमाम मसले मसाइल का हल है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहे मर्द हो खवातीन हो ऑयली स्किन की वजह से एक्ने भी बहुत ज्यादा आ जाती है स्किन पे, एक्ने आने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल बहुत ज्यादा डाउन दिखने लगती है. ठीक है, आपका चेहरा कभी भी फ्रेश नजर नहीं आता इस ऑयल की वजह से. तो इस ऑयल को कम करने के लिए और अपनी डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम. ठीक है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी, आपकी रंगत को निखारेगी, फेयरनेस देगी, और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट. तो बहुत सारे लोग जो कि इसके फायदे तो इतने दिन से सुन रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डाउट ये भी है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या विदाउट एनी साइड इफेक्ट हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे. तो बिल्कुल विदाउट साइड इफेक्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे.

सुपर वाइट की ऑल फ्री ब्यूटी क्रीम जिसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो क्रीम के रिजल्ट है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप खूबसूरत नजर आएंगे. ठीक है, तो सुपर वाइट का ये ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, और ऐड करने के बाद अपने क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं. और मजीद इसके रिजल्ट अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग सुपर वाइट की सुपर वाइट का फेस वॉश भी यूज करेंगे, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश. ठीक है, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करेंगे, सो डैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. तो आज की मार्केट जाएं और बाय करें.

मार्केट जाके क्या बाय करना है, सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश और साथ में सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. अच्छा, ब्यूटी सीरम बूस्टर की खासियत ये है कि ब्यूटी सीरम बूस्टर जो है ना, आप लोग क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. और किस में ऐड कर सकते हैं आप लोग, इसको अपनी ब्लीच क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग फेशियल्स जब करते हैं तो उनके स्टेप्स में भी जो है वन बाय वन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक पिंच, ठीक है, एक एक पिंच हर स्टेप में. सो डैड आपको इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके जो फेशियल के या जो आपके ब्लीच क्रीम के रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और आप दिखेंगे इंस्टेंटली बहुत ज्यादा खूबसूरत.

0: अच्छा साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी एंटरटेन करते हैं 03000113488 पर सुर लगाओ गाने सुनाओ सेगमेंट हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से मकार जतोई भाई कैसे हैं ठीक ठाक मजे में ही जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: जी जी प्रोग्राम आप आपका प्रोग्राम मेरे ख्याल से
0: जी
1: मैंने कहा आपका प्रोग्राम आज सुना है और सुनते रहेंगे
0: अच्छा वैसे नहीं सुनते
1: जी जी
0: वैसे नहीं सुनते आप
1: हेलो
0: जी जी वैसे प्रोग्राम नहीं सुनते हेलो
1: आवाज नहीं आ रही
0: अब आ रही है मेरी आवाज
1: हेलो
0: ओके जी आवाज नहीं आ रही वेरी बैड

0: पता किया था तो नहीं मिल रहे थे कोई
1: शेरों में, नहीं मिल रही तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करें, जो मैं सखर और लाड़काना वाला बता रही हूँ ना, उनसे आप जो है ना कांटेक्ट करें और बताएं अपना सिटी, ठीक है, तो फिर वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे।
0: बिल्कुल इंशाल्लाह।
1: ओके, और कुछ कहना चाहेंगे?
0: नहीं, गाना सुनाना चाहूंगा।
1: कौन सा?
0: जब शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ये
1: अच्छा, ओके, किसी को डेडिकेशन है? जिंदगी गुलजार है, जिंदगी गुलजार है भाई, सुपर वाइट कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं ना, जैसे अभी भाई ने कॉल किया और वो सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लें, तो वो जो सोच रहे हैं ना, वो सबसे पहले एक दो चीज़ें लें, ठीक है। एक चीज़ आप क्या लेंगे, फेस वॉश लें। फेस वॉश का कोई भी वेरिएंट जो आपको अच्छा लगता है अपनी पसंद से, या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगी आपको कि जितने भी मर्द हजरात हैं, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, सन टैनिंग और जो पिगमेंटेशन है वो हो जाती है, तो विटामिन सी फेस वॉश आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ले लें, वैसे आप कोई भी लेंगे, आपको जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा आप लोग एक अदद पेट्रोलियम जेली लें सुपर वाइट वालों की, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करें, कर लें, हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए 03147754462। और जो हैदराबाद वाले हैं वो मुमताज हसन खान से राबता करेंगे, उनका नंबर है 03702568321। गाना गाने के साथ न्यूज ब्रेक फॉलो बैक कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, साथ देना है। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स. सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप लोगों के लिए. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488. साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो कमेंट और मैसेजेस की तरफ मूव करते हैं. सरफराज अली का कमेंट आया है. सरफराज अली गड़ी बरोज फ्रॉम कराची, वेलकम टू द शो. मुनव्वर अली कहते हैं लाजवाब शो. सरफराज कहते हैं गुड मॉर्निंग, दिस इज अल्ताफ अली गड़ी बलोच फ्रॉम कराची. ओके, आर्ज मोहम्मद गोला हमें सुन रहे हैं जी जिला जैकबाबाद से. इसके अलावा नजीर खोसो हमारे साथ साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच नजीर खोसो. और इसके अलावा रशीद खोसो भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू रशीद खोसो. हैदराबाद से आप हमें सुन रहे हैं, हैदराबाद में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं. अगर ना मिले तो हेल्पलाइन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं हैदराबाद वालों के लिए, जो सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप डायल कर सकते हैं 03702568321. ठीक है, ये नंबर है, इसको डायल करेंगे हैदराबाद वाले. और जो सखर और लाड़काना वाले हैं वो डायल करेंगे हेल्पलाइन नंबर सुपर वाइट वालों का 03147754462. ठीक है 03147574462.

इसके साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो आपको बताऊंगी. तो आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह होगा कि पहले हम गाना प्ले कर दें क्योंकि हमारा गाना जो है ना ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो रहा है. सो इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ नहीं, इसके साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ

0: ओके, आज का टंग ट्विस्टर है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं. ठीक है, ये कहना है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं, ये कहना है. और देखते हैं कि ये ज्यादा ज्यादा कौन कह पाता है. 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल करेंगे. ठीक है, चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं. इसकी प्रैक्टिस करें और कॉल करें. तब तक मैं आपको एक फॉर्मूला के बारे में बताती हूँ जी. और फॉर्मूला जो है ना वो आप लोग बना सकते हैं सुपर वाई के प्रोडक्ट से ही. सो सुपर वाई के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे आप एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको एक अदद बेहतरीन फार्मूला बिल्कुल भी नहीं मिल सका है. अगर आपने बहुत सारे फार्मूला ट्राई किए हैं और उससे आपको साइड इफेक्ट हुए हैं तो आप नहीं होंगे, क्योंकि सुपर वाइट वाले कभी भी अपनी क्वालिटी और मयार पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. और इसी वजह से इनके प्रोडक्ट सुपर से भी ऊपर हैं, तभी इन्होंने नाम भी रखा है सुपर वाइट. ठीक है, सुपर वाइट के लिए, सुपर वाइट फार्मूले को बनाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेनी है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम एंड एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम. ठीक है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम. ठीक है, एक्नी क्रीम और ब्यूटी क्रीम दोनों ही ऑयल फ्री में आती हैं, ये ले लें. तीसरी चीज आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर. और इन तीनों चीज़ों को एक जार में अच्छे तरीके से निकाल लें, क्योंकि जो एक्नी की क्रीम है इनकी वो ट्यूब की वेरिएंट में आती है, उसको अच्छे तरीके से निकाल लें. इसके अलावा जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है वो आप लोग लास्ट में इसमें ऐड कर दें. इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि तमाम चीज़ें आपस में यकजा हो जाएं. और जब ये यकजा हो जाएं तो इनको जार में जो है आप लोग स्टोर कर लें. स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करें सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से. सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने का ये फॉर्मूला रात को सोते हुए अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें डेली बेसिस पे. 3 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे और 3 दिन में आप कहेंगे कि वाह क्या रिजल्ट्स हैं. ठीक है, तो खूबसूरत बना देने वाले रिजल्ट्स होंगे और हसीन बना देने वाले रिजल्ट्स होंगे. और एक हफ्ते में विजिबल वाजे फ़र्क आप देख सकेंगे. आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे है. ठीक है, तो हेल्प लाइन नंबर आप लोग नोट डाउन करें, सखर और लाड़काना वाले 03147754462. इसके अलावा हैदराबाद वाले डायल करें 03702568321. टंग ट्विस्टर एक बार फिर से आप सुन लें. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं. ठीक है, ये कहेंगे. नेक्स्ट कॉलर लेने जा रही हूँ. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: आबादी इमाम जी, नंबर वाले क्या साल है पता.
0: कौन से प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई मेरे? तो आपने इसको इतना मतलब के दुखी अंदाज में क्यों गाया है? चले मेरी नाइस. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज करते हैं? सुपर वाइट जब प्रोडक्ट यूज करना आयो खरीद लिया कडे गंदो खरीद
1: सोमर जड़ी.
0: सोमर जड़ी, ओके. टंग ट्विस्टर बुधो आहे?
1: बिल्कुल बुधा पर ये टंग ट्विस्टर का संग नहीं दो, ये कान पाच नहीं बुधा नहीं मत संग नहीं
0: दो तवा के नहीं दो
1: वहां ना वाली तो को गाना घूम जाए अपने बना दे जाने दागे.
0: ओके, तवा के गानो बुधराई था. ठीक है, पेंजो खोर सारो ख्याल रखो. जी जी
1: बुधो.
0: जी जी ओके ठीक ओके अल्लाह हाफिज जी. और 03000113488 चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं, ये कहेंगे. एक और कॉलर. हेलो, कौन बात कर रही है, कहाँ से? Hello.
1: I love you.
0: Allah Hafiz. 03-00-11-34-88. एक और कॉलर लेंगे जी. हेलो.
1: चाचा चटपटी जैसा खाई जाओ बेटा, चाचा चटपटी जैसा खाई जाओ बेटा, चाचा चटपटी जैसा खाई जाओ बेटा, चाचा चटपटी जैसा खाई जाओ बेटा.
0: रुक तो जाए ऐसे. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं.
1: बस भाजी जलाल भाजी बुधा भाजी.
0: ओके. अल्लाह हाफिज. 03-00-11-34-88.

0: बताओ कीजिए एक और कॉलर. हेलो हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: कौन क्या जो
0: ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी हाँ.
0: ओके कौन सा सुन रहे हैं?
1: सुपर वाइट.
0: सुपर वाइट का प्रोग्राम सुन रहे हैं. सुपर वाइट के कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं? कौन सी क्रीम?
1: नाम समझ नहीं आ रहा, बताइए.
0: सुपर वाइट ही तो है नाम इसका.
1: हाँ सुपर वाइट.
0: ओके जी ये सुपर वाइट ही नाम है. सुपर वाइट का शो है तो सुपर वाइट ही नाम हुआ ना क्रीम का.
1: जी
0: है ना. अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे? टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
1: नहीं मैंने नहीं सुना प्रोग्राम. मैंने
0: चले फिर प्रोग्राम सुने. थैंक यू सो मच. और मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो कि प्रोग्राम सुन रहे हो और जिन्होंने टंग ट्विस्टर सुना हो, वरना उन लोगों की मेहनत जाया हो जाती है कॉल मिलाने की जो कि टंग ट्विस्टर सुनते हैं और फिर बोलने के लिए कॉल करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी कॉल नहीं लग पाती. सो मैं ऐसे लोगों को मौका देना चाहती हूँ जो इस सेगमेंट के लिए ही कॉल कर रहे हो. एक और ट्राई करेंगे फिर हम गाने की तरफ चलेंगे. हेलो
2: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? अर्शद मरी.
2: दीदी
0: कैसे? ठीक ठाक. कितने अरसे बाद कॉल कर रहे हैं?
2: बिल्कुल जो है ना बहुत अरसे के बाद ना आज ही मैंने आपका शो सुना और कॉल लगाई है.
0: चले जबरदस्त. अच्छा और प्रोग्राम सुन रहे हैं किसके दामन से है?
2: प्रोग्राम आपका अभी मैंने सुना थोड़ा सा और कॉल भी आपको ना फौरन ही लग गई. पहले ही नंबर और लग गई.
0: अच्छा टंग ट्विस्टर है अगर मैं बताऊं तो आप बोलेंगे?
2: अच्छा टंग ट्विस्टर कौन सा है? कोशिश होगी इंशाल्लाह.
0: आपने कहना है कि चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर जाते हैं.
2: ये तो ये मुश्किल है.
0: चले ये मुश्किल है. चले जो आसान है वो बता दे. जो आसान है वो बता दें जल्दी से.
2: आसान बस आपका शो है, जबरदस्त शो है, सुन रहा हूँ. और अभी दोस्त हैं सुन रहे हैं मेरे साथ, रबन नोफिल पुड़ रहे, अली शेर चना है और भी दोस्त हैं, बस बहुत सारे दोस्त हैं. और आपको सलाम, सबको सलाम.
0: ओके जी थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. और इसी के साथ हम चलेंगे.

ओके जी, इसी के साथ हम गाना प्ले कर रहे हैं. हम सुनते हैं जी कोक स्टूडियो का लेटेस्ट सॉन्ग दैट इज रंगीन. ठीक है, इसको सुनते हैं.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खिबसे की बनी है आवाज.
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज.
4: अरे नहीं खुश्क और बीरोनो की स्किन और इमेज लाइट छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चार जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे आई चामरन जो खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जय जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सर कॉस्मेटिक्स.
0: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखरे रीजन 03147754462.
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो.
0: अगर खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा ऐं एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
5: लाड़काने वसल लाए खुशखबरी डॉक्टर अजीत कुमार एमबीबीएस एचसीबीएस डर्मेटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियन जो माहिर हिते मोहिड़ा डॉक्टर मल्लो पुरानी खान करो पुरानो पट्टो
4: बीरो की स्किन हर इमेज लाइट डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चार जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे आई चामरन जो खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 ॾींहनि में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सर कॉस्मेटिक्स.
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जिनसे आप हैंड एंड फीट फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लें. हेल्पलाइन नंबर है सखर और लड़काना वालों के लिए 03-14-77-544-62. इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो मुमताज हसन खान से राब्ता करेंगे. उनका नंबर है 03-70-25-68-321 03-70-25-68-321. सखर और लालकाना वाले डायल करेंगे 03-14-77-544-62.

अच्छा हैंड्स एंड फीट फार्मूला आप लोग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं? हैंड्स एंड फीट फार्मूला तैयार करने के लिए आप लोगों को चाहिए एक अदद सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम और उसके साथ एक अदद सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली. दोनों चीजें लेके आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली को इतनी क्वांटिटी में लेना है जितनी आपकी सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम हो, ठीक है, इस क्वांटिटी में ले लें. एंड देन आप जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, दोनों चीजों को आपस में इतना मिक्स करें कि आपस में एकजान हो जाए, ठीक है. और जब ये आपस में मिक्स हो जाए तो तैयार है आपकी हैंड्स एंड फीट ब्यूटी क्रीम, और इसको आप रात को सोने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं. और अगर इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं तो ब्यूटी सीरम बूस्टर भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है. ब्यूटी सीरम बूस्टर जिसको आप लोग इसमें ऐड करके उसी प्रोसेस में मिक्स कर सकते हैं, एंड देन आपको इसके बहुत ज्यादा अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे.

इसके अलावा जी आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सेंड हमें मैसेज कर दिया है महबूब अली मोरो सिटी से, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपका प्रोग्राम सुपरवाइज जिंदगी गुलजार है वेरी नाइस है, और आप जलाल को प्ले नहीं कर रही हैं। अच्छा, जलाल को प्ले करना है, ओके। इसके अलावा हमें सफदर बलोच ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, आप कैसी हो, कुछ दिनों के लिए कहाँ गायब थी आरजे, मैं बिल्कुल यही थी, कहीं गायब नहीं थी, ठीक है, थैंक यू सो मच सफदर बलोच। इसके अलावा सफदर बलोच ने बहुत सारे शेर लिख भेजे हमें, थैंक यू सो मच सफदर बलोच। इसके अलावा गाने की तरफ भी हम चलेंगे एक और सुपर वाई के प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे।

1300 00 11 34 88 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जा रहा है. सो कॉल कीजिए और आज का जो टंग ट्विस्टर चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं, ठीक है, ये कहना है आप लोगों ने. देखते हैं कि ये कौन कौन सही सही कह पाता है. और गाना करेंगे हम चेंज. एक और कॉलर. हेलो हेलो हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है. 03000 11 34 88 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं.

0: ओके जी एक और कॉलर. हेलो. ओके हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सरदर्द. तुम्हारे लिए इतना अच्छा टंग ट्विस्टर लेकर आई हूँ, किधर गायब हो? अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है तबीयत को?
1: मलेरिया.
0: थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही.
1: मलेरिया हुआ था मुझे.
0: मलेरिया हुआ था? अच्छा, अब कैसी हो? अब ठीक हो? चलो जबरदस्त, अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी से सेहतियाब करे और तुम पहले से भी ज्यादा अच्छे अच्छे टंग ट्विस्टर बोलो. और आज का टंग ट्विस्टर सुनाए. एक बार रिपीट करो. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं. वाह, मलेरिया में भी इतना अच्छा कह लेती हो टंग ट्विस्टर.
1: मलेरिया में तो स्पीड ज्यादा हो गई है.
0: मलेरिया से स्पीड ज्यादा हो गई है? किसी स्पीड वाले मच्छर से मलेरिया हुआ होगा है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. चलो जल्दी से ठीक हो जाओ सरदर्द. कुछ और कहना है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. और जो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार कॉल करने के बाद अगर उनकी कॉल दोबारा आती है तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? ड्रॉप सीन हो जाएगा. इससे पहले कि हो जाए मैं आपको पहले से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है? 03000113488 जिसके ऊपर कॉल और टंग ट्विस्टर और साथ साथ सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर सखर और लाड़काना वालों के लिए स्पेशली सखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03147754462, ठीक है? इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे 03702568.

ओके एक और कॉलर. हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? ओके कहाँ से बात कर रहे हैं? ओ कॉल ड्रॉप हो गई. अच्छा साथ साथ सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग. ये वो वेरिएंट है जिसको आप अपनी कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं तो सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम प्लस सुपरवाइज का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश यूज़ करें.

तो स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम के बारे में हम बात कर रहे थे. तो सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तैयार की गई है कोरियन फार्मूला के साथ. और अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले सुपरवाइज की कोरियन फार्मूले से तैयार की गई स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जिसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं ये बनाते हैं, और इसके रिजल्ट आपको 3 दिन में विजिबल नजर आते हैं, ठीक है. तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोरियन एंड ग्लास स्किन हो. सो इसको यूज किया जा सकता है. प्लस अगर इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल बनाना चाहते हैं तो सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी यूज किया जा सकता है, ठीक है. और इसके अलावा जी आप इनके सोप्स को भी यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं. तो सुपर वाइट का ब्यूटी सोप, ऑयल फ्री ब्यूटी सोप, इसके अलावा सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी लेकर पाओ तो कोरियन ग्लास स्किन होना पॉसिबल है, ठीक है. लेकिन आपने इसको कंटिन्यूसली यूज करना है. और अगर आप कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं उसमें भी आप सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करके आप उसके रिजल्ट्स को डबल से ट्रिपल बना सकते हैं और रिजल्ट्स को इनहेंस कर सकते हैं. सुपर वाइट का राइस सीरम भी ऐड किया जा सकता है सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में, ठीक है. तो ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे पहले 3 दिन के अंदर. और अगर कहीं पर प्रोडक्ट्स ना मिल रहे हो तो हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है. हेल्पलाइन नंबर है 03147754462. इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे 03702568321. ठीक है, इस पर रब्ता करेंगे. मुमताज हसन खान का नंबर है 03702568321. इसके अलावा सखर और लाड़काना वाले डायल कीजिए 03147754462.

फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हो चुका है. सो हम जाएंगे और कल आने के लिए जाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो जाते हैं और जाते जाते वही बात कि ख्वाब देखने के लिए सोना ज़रूरी और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना इससे ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है. अच्छा, लास्ट में ना कुछ कमेंट्स मुझे नज़र आए हैं. जवार बच्चल हमें सुन रहे हैं, निज़ाम भट्टी काजरी हमें सुन रहे हैं, इसके अलावा जी अली रज़ा लगारी हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद सलमान कुंबर से हमें सुन रहे हैं. बाजी मुझे आप गाना सुना दें. ठीक है, मैं आपको गाना सुनाती हूँ. ठीक है, जाते जाते आपको गाना सुनवा के जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं. और ये अभी तक के सारे कमेंट्स जो कि आप लोगों ने भेजे और मुझे रिसीव हुए. महबूब अली मोरो सिटी से हमें मैसेज कर रहे हैं, सुपर वाइट का शो जिंदगी गुलजार है, इनको बहुत अच्छा लगता है. और इसी के साथ फाइनली लास्ट गाना हम प्ले करेंगे और दिस इज मी आर जे रुखसार साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: आप खुद शाहिद हैं इस बात के. आप यही शाहिद हैं. तो ये सारी बातें हो गई हैं जी. अब तारीख गवाह है कि जो कौमें अपने आप को नहीं सोचती, बाहर की कुवतें उनको एक्सप्लॉइट करती हैं. आपको पता है कितनी जंगें पूरी दुनिया में चल रही हैं. मार का हक में जो मुंह की खानी पड़ी हिंदुस्तान को, भारत को, मोदी सरकार को, उसके बाद आपका ख्याल है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर उनके जहन में अभी भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम को कुछ बताना है कि वो क्या कराए, पाकिस्तान से किस तरह

0: हिम्मत का शिकार हो गया है, और दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान देखें, यहाँ हॉस्टाइल रेजिम्स ऑन बोथ साइड, अब वो आप प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, वो नहीं आपका सामना करना पड़ता, क्योंकि आमने सामने जो जंग हुई है उसमें उनको बुरी तरह ब्लडी नोज हुई है, तो वो अब प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। आप प्लीज होशमंद हो जाए कि हो क्या रहा है नाक के नीचे, और आपके सूबे जो आप कहते हैं ड्यूरैंड लाइन, देर इज नो सच थिंग एज ड्यूरैंड लाइन, या अंग्रेज ड्यूरैंड लिख के गया, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, देर इज अ बॉर्डर एंड देर मस्ट बी अ पासपोर्ट। मैं आपके मुल्क का तहफ्फुज़ क्यों नहीं करूं, करूं, लेकिन आप उसका खुला दरवाजा तो ना छोड़े। आपके रिश्तेदार हैं तो पार्टीशन हुआ तो पंजाब और सिंध के रिश्तेदार नहीं थे सर। आगे मैं नहीं बात करना चाहती इन चीजों का, लेकिन यू हैव टू हैव वन पॉलिसी, वन स्टेट, एंड यू हैव टू फाइट टुगेदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। हम सब समझते हैं कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनना चाहते हो, या हो, सबके दिलों में अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई मोहब्बत होती है। मैं नहीं यकीन कर सकती कि नहीं है। आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, आपकी इज्जत होती है, लेकिन प्लीज फ्यूचर को देखें, आगे देखें, किस बंद गली में आप उस दिन वायदा फाड़ के जब गए, किस भखाड़ा भी नहीं आपने, आपने कहा ठीक है, मगर आपकी लोकल की आदत ने आपको नहीं करने दिया। उन्होंने जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, खड़े होके वादा किया, हल्फ लेके वादा किया आवाम से कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, वो अपना एजेंडा लेके फिर रहे हैं। आप लोग अपना एजेंडा संभालें, क्या एजेंडा है ये भी बता दें हमें। मुझे तो आज तक समझ में आई व्हाट वाज द लॉन्ग मार्च फॉर, मैंने पूछा भी था। अगर एक फर्दे राहत के लिए तो उनसे भी माजरत कर लें, वक्त आ जाएगा, हर चीज का वक्त आता है। कल आज हम कोई इकतदार में, कल कोई और होता है, ये कोई, ये सब आनी जानी चीजें हैं। जेल की सलाखें सबने देखी है, यहां सब बैठे, किसने नहीं देखी है? तो भाई आप तय कर दें कि हमने आगे जाना कहां है और सूबा क्या करेगा। कोई किसी को शौक नहीं था, किसी ने कहा नेके ग्रैब फॉर पावर, व्हाट पावर, केपी को लेकर क्या कोई करेगा? वहां तो हमने जंग में बैठना है, दहशतगर्दी की शहादतें देनी होगी, मजीद देनी होगी, क्या मिलना है वहां से? हम सब अपने अपनी अपनी इमरजेंसीज अगेंस्ट एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड पॉवर्टी संभालें। देखें लोगों के हालात क्या है जमीन पे। पिशावर में आज स्कूल गिरा है, अल्लाह ताला ऐसा सानिया किसी को ना दिखाए, बच्चे शहीद हुए हैं, ये तो कहीं भी हो सकता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूं, दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ दीज डिस्कशन, लेकिन प्लीज होश के नाखून ले और वापस आए सोच के कि आपने आगे जाना कैसे है। डिक्टेशन ना दें जी, ना हम आपको डिक्टेशन देते हैं, हम किसी पोजिशन में नहीं है। इक्तदार में तो बंदा और भी आजिज होता है, तो डिक्टेशन ना दें। जैसे आपके खान साहब तो ये कहते थे ना, माई वे और द हाईवे, बाहर मुल्क के बाहर जाके कहते थे कि मैं सी क्लास जेल दूंगा, मैं अजियत दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। कश्मीर वहां जल रहा है, इन्वेजन हो रहा है, अब वो श्रीनगर हाईवे नाम बदल के बैठ गए, अब कमेटी रूम में आ नहीं रहे। प्लीज हमें हुब्बुल वतनी का फिर दर्स ना देना। सर अचित भाई साहब आप तो बेहतर जानते हैं मैं किस जमात से हूं और यहां कौन लोग हैं, वो किन किन हालात से गुजरते हैं। राना सनाना बैठे, आपने उनको जेल की सलाखों में डाल तो दिया था, शोर हंगामा नहीं किया। फरियाद बीबी बख्तरबंद गाड़ी में जा रही थी रात को, अस्पताल किम्स अस्पताल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अ अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

उम्मीद मुआजों के बादशाह से है। तुम्हारी उम्मीद मुआजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम को सदमा सुमय सुने समातन की मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। के संबंध है शादी की बारिश लासुल खजानों के साथ हुआ है। कल से पल पता से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत सांस से दर्द से खुशी तक जल से दिल दबा जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के समय सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मांतली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर तरह से आपकी खूबसूरती के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आपके चेहरे पर वर्क करेंगे, किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपको हसीन खूबसूरत और दिलकश बना देंगे। तो जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और वाइट एज के प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम में बताया जाएगा। ओके जी सुनने वाली तमाम समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, अपने हाल चाल बताते जाइए। सुनिए लिसनर्स अंत की फहालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीद शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करें होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स से अपनी खूबसूरती में जो है ना 4 चांद लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन जब आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट परचेज करें जो कि भाई दावा कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से रिजल्ट देने वाला है, या जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, तो जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें या जो भी प्रोडक्ट आपको ऐसा होता है कि भाई ये हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि कई मरतबा तो आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव भी हो जाती है और सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप समझ नहीं पाते कि कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो आप लोगों को इस प्यारे प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है उन तमाम दर बातों के बारे जो की बातें आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है। आप लोगों का जब खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई दिल खराब हो चुका है, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन खराब हो जाती है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए भी आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ढेरों ढेर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को आगे से प्रोग्राम करवाएंगे। आगे से प्रोग्राम करते हैं जी आज एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। बहुत प्यारा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है, कसीदा सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है और बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर नूरियाबाद और लाड़काना की लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि जितनी भी सुनने वाली समाज है वो सब लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं ऑलरेडी। ओके जी, अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन ही, आप सब लोग ही ट्राई कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप लोगों को बताती चलो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूला वो होता है जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, आपकी जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार करी है। लेकिन साथ साथ अगर बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या चीजें ऐड की गई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, जो कि आप लोगों के चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को देती है ऐसा निखार, ऐसी खूबसूरती जैसे आपने कोई महंगा फेशियल कराया। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आप कोई महंगा सा फेशियल करा के आए। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपके चेहरे पर जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे या फिर जितने भी क्रिकल्स हैं, रिंकल्स वगैरह हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है और आपको रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना, अच्छे वाले रिजल्ट्स, परफेक्ट वाले रिजल्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को सेफ रख सके, यानी कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर सके, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बाउंड्रीज रखी गई है कि हाँ लड़कियां लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या लड़के लगाएंगे, लड़कियां नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप ऐसा कीजिए, अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज करेंगे तो आपको जनाब इतना प्यारा निखार मिलेगा, इतनी प्यारी जो है ना आपको खूबसूरती मिलेगी। इसका जो नरम और खूबसूरत एहसास है ना, आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देता है, आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है और अच्छी तरह से आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है। आपकी जल्द की शख्सियत जो है वो ऐसा फील होता है कि भाई ताजगी का एहसास हो चुका है, आप हमेशा रिफ्रेश जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। आपकी स्किन जब फ्रेश होती है ना तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप कहीं जा पाते हैं सुकून से और आपको एक तसल्ली सी होती है कि भाई हमारी स्किन जो है ना अब बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपके चेहरे पर कोई भी इस तरह का एक्ने नहीं बचा, कोई भी इस तरह का निशान नहीं बचा, कोई भी रिंकल नहीं बचा, अब आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ अफोर्डेबल और कुछ ऐसा जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, ये दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाएगी। और साथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ही कमाल के, क्या ही वाओ वाले जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो आपके चेहरे पर जो ना ग्लो और निखार आना स्टार्ट हो जाता है, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो भाई अच्छा फील करेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना वो भी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल अपनी स्किन को अच्छा फील कराइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए और अपनी जरा जो है ना खूबसूरती का स्टैंडर्ड जरा हाई रखा करें। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बस आप लगाना स्टार्ट कर देते। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से जो ऐसा होता है ना कि अगर आप महंगे महंगे फेशियल्स कराने जा रहे हैं और आप लोगों को ऐसा होता है कि भाई फेशियल तो आपने हफ्ते हफ्ते में कराना है या महीने महीने में कराना है, लेकिन ऐसा वाला सीन बना दें कि आप बस मार्केट जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप घर बैठे लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये वाला फायदा आपको मिल रहा है कि एक तो ये मुनासिब

पर हिते कमेंट आहे जी मां जल्दी कमेंट इन लाइ पढ़ंदी आहियां वरना तव्हांजा कमेंट जेके न उहे मथे भॼी वेंदा आहिनि सो मोहम्मद ज़मान भाई मेरे साथ मौजूद कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माई स्वीट बुआ जी आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारी भाई अच्छा हिदायतुल्लाह हाँ वैसे मुझे ज्यादा याद नहीं है और किशोर भाई हमारे साथ ये थे सलाम मुझा खूबसूरत अदा वालेकुम अस्सलाम मुझा सोना अदा जैन कहते हैं कि तेरे होने से हसीन है ये कहानी दिल की तेरे होने से है आबाद फसाना दिल का अरे वाह क्या बात है और तारिक भाई लिखते हैं कि घोटकी में हमारे दोस्त सदानी ट्रेडर्स घोटकी दीपक भाई शकील ऋतिक मोहन अकबर अली अकबर अली बुक्टी फराज अली ये सब हमारे दोस्त हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं घोटकी में ओके जी ये सारे हमारी जो टीम मेंबर्स हैं जिनमें आप लोगों के लिए दीपक भाई मौजूद हैं शकील हैं ऋतिक है मोहन है अकबर भाई हैं फराज हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो जितने भी घोटकी वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो वहां से जाकर यानी कि सदानी ट्रेडर्स से जाकर आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटेज के प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज कर सकते हैं आपको आराम से मिल जाएंगे और इन तमाम भाइयों को वेलकम कहते हैं और साथ साथ महर इरफान सियाल साहब कहते हैं कि सलाम मैम दीपक राज भाई माई डिस्ट्रीब्यूटर घोटकी से डेडिकेशन सॉन्ग टू दीपक भाई और उनकी ट्विंस डॉटर्स हैं वीरा एंड वीरता क्यूट प्रिंसेस माशाल्लाह ओके जी दोनों परियों के लिए प्यारा सा गाना लगा देंगे दीपक भाई को भी डेडिकेट कर देंगे आपकी तरफ से और बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ मौजूद हैं दीपक भाई माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और सासा जो है ना उनके लिए ढेर सारी दुआएं और ये मेरे पास एक बड़ा प्यारा गाना मौजूद है मैं सोच रही हूँ कि हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे लेकिन ये वाला गाना हम महर इरफान सियाल साहब की तरफ से दीपक भाई को डेडिकेट कर देंगे और उनकी जो प्यारी सी दोनों डॉटर्स हैं ना वीरा एंड वीरता उनको भी डेडिकेट करते हैं माशाल्लाह खुश रहें और एंजॉय करें Whitish and D-Skin Beauty Show sponsored by D-Skin Beauty Products and Whitish Beauty Products

ही कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ये गाने ऐसे गाने हैं हम जितने भी सुन ले हमारा दिल ही नहीं भरता. बहुत प्यारा बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है. और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा यहाँ पे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है. तो जो लोग ऐसा होता है ना कि क्रीम ही नहीं लगा पाते, चलें आप ऐसा वाला सीन है कि चलें आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है. अगर आप फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश, ये सब लोगों के लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है.

हम, लेकिन आपने जरा डिस्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर उसकी खूबसूरती में खो जाना है। और किशोर भाई कहते हैं कि मुझे बचपन में फनी सजा तो न मिली हुई, पर यादगार सजा, खतरनाक सजा मिली, जहे जो मूसा को तालक भी न हुए। आईली ई भी थी दो हो वैसे। मोहम्मद जमान कहते हैं चापे अबू, लिखते हैं कि अबू कमरे में बंद करने की धमकियां देते थे और तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा, जैसे ही कमरे में बंद करता था तो हम ब्रो आपस में मुर्गा बनने की अच्छा वो कोशिश करते थे। और टॉपिक अच्छा कहते हैं अच्छा प्रैक्टिस करते थे ताकि अबू अगर मुर्गा बनाए तो फिर हमें कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है। बताओ सेन लिखते हैं कि जी सिद्रा आज कुछ भी हो जाए लेकिन आपने गाना मेरा लगाना है। जी बिल्कुल आज आपका गाना लगा देंगे। इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं आप, मुझे बताएं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया या अभी आपके जो ये दोस्त हैं मोहम्मद बख्श मला भाई उनकी दुकान पर अवेलेबल नहीं हुए। और कहते हैं कि नूरदीन अबरो शाका अबरो विलेज आंदल खान मला से आप हमारे साथ मौजूद हैं। ओके हो गया जी। फकीर साहिब शेख लाड़काना से मैं सुन रहे हैं वेलकम। निसार मोलाई हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हमारे पुराने लिसनर हैं। ओके जी। सपनों से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे सपनों की जो दुनिया है ना वो बहुत सुंदर है और ये जो बाहर की दुनिया है ये बड़ी खतरनाक है। तो ऐसा लगता है हमें कि भैया हमें सपनों की दुनिया में ही रहना चाहिए। और समाटो गोपां कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा केसिया, कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू, वेलकम। आप बताएं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज किए कंबर सिटी में तो मिल रहे हैं, तो आप कब ले रहे हैं मुझे बताइएगा। गाना सुनना चाहते हैं? ओके जी सुना देंगे। अच्छा निसार मोलाई भाई आपने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, ठीक है जी, आप हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं, 2013 से मेरा शो सुनते हैं। ओके लेकिन मैं तो तब आई नहीं थी एफएम पे। वेल आपको वेलकम कहते हैं। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा ठीक।

बिल्कुल जी मजा था कबाब पर डीस की ब्यूटी क्रीम लगाए पो तमा लगाई खून बुधाईंदा हेलो मुखी मीर ममताज बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ब्यूटी शो आपका अच्छा है स्किन केयर करनी चाहिए नाइस है वोट दाद मोहम्मद बिरोही मदेजी से मीर मोहम्मद बिरोही अशफाक अली बिरोही सजाद अली बिरोही भाइयों को वेलकम कहते हैं वासु भाई कहते हैं सिडो जवाब एक दफो अबे सजा दिनी हुई बदी छड़ियो हुए पूरो कलाक अदी आई मामा ही चाचा तन्न गोशी कराइंदा हुआ अच्छा ये तो वैसे आम सी सजाएं हैं मुझे लग रहा है कोई ऐसी सजा बताएं जो आपको मिली अपने बचपन में आपको लगता है कि ये थोड़ी वक्री सजा है भाई अच्छा निसार भाई हमारे घुनी वाले लिसनर थे अब उन्होंने अपनी खामोशियों को तोड़ लिया है अच्छा किया है आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं थैंक यू बस आप एक काम कीजिएगा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कीजिएगा दोनों चीजें साथ में लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे दोदा हाली हमें सुन रहे हैं हेलो भाई अच्छा गदा भाई कहते हैं गदी सिद्रा देख लो आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अभी मोरो वालों ने आपका प्रोग्राम बंद कर दिया है अब आपका प्रोग्राम कैसे सुने मोरो वालों ये क्या है पहली शिकायत आपकी मुझे मिली है मोरो वालों की तो मैं तारीफ करती हूँ मोरो वाले जो हमारा अच्छे से प्रोग्राम कनेक्ट करते हैं भाई तुम्हारी शिकायत है न मिलन गुर्जे सही प्रोग्राम कनेक्ट करो अदा मोरो वालो अच्छा रमजान भाई भी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से कमेंट्स लिखा करें इतनी लंबी चौड़ी शायरियां भेज देते शायरियां जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में भेज दिया करें ठीक है

ਉਹਦੇ ਵਾ ਘਰ ਵਾਲਾ अच्छा दाऊद अली पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कराची से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम कहते हैं। अच्छा दाऊद भाई लिखते हैं कि इस मतलब की दुनिया में तो मोहब्बत को मत ढूंढ, खुद को बर्बाद करने की वजह मत ढूंढ, यहाँ पर तो हर कोई अपने आप को वफादार बनाए बैठा है दाऊद, तो जो खुद को बेवफा बनाने की वजह मत ढूंढ। सब सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, समाटू तांचो घनो भी हलायों। और ये जी अरबेलो चाचड़ भाई घोटकी से हमें सुन रहे, अरबेला भात आ घोटकी माँ जिको ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी सगो था घोटकी में तवा जला डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा अवेलेबल कराए छिया है, तो घोटकी में दीपक भाई वेठो आए उन वटा तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश वी सगो था। चाचा खालिद कहते हैं सजाएं मिलना तो अब स्टार्टेड, बचपन में तो हम मासूम थे, ये टॉपिक आंसर क्या बात है चाचा की, हाँ सजाओं मिलन थी। अरे बाबा केर चाचा के सजाओं दे तो

निसार भाई कहते मुझे बड़ी अच्छी सजाएं मिली थी, उनको मैं जिंदगी भर याद करता हूँ। कौन सी सजाएं मिली ये भी तो बताएं। मज़ाक कंदा सी पर तमा इते वेओ इते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो तखा पोई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा वापसी जल्दी मोड़ी तमा नींदासी तमा कारी नवंजो इते वेठा हो जो सने प्रोग्राम बुधंदा रहो बाबा आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन मिले थी त नंबर ते राबतो करे वठो आई पाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वठो मां ही वनी ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर आही बाबा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स 57 सो लगाइंदा रहो सोना थींदा।

0: और तीन मंजिला इमारत थी, इसके ऊपर तीनों क्लासेस थी। 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और दूसरे भी इसमें शहीद हो चुकी है और 47 से करीब चलती है। 25 जो है घोषित किया गया है लेडी रेडिंग हॉस्पिटल। 110 मैंने आपको बताया, तीन क्लासेस थी उसमें बच्चे थे और अभी मजीद हमें खतरा है, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन हलाकतों का खदशा ज्यादा है। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी आपके सामने तंग गली है, रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है, तो कोशिश बढ़िया।
1: केपीजे शहर पेशावर में टे मार निजी स्कूल की छित किरी पई, 29 शागिर्द समेत 30 जणा दबजी फोत, 53 जख्मी। पुलिस स्कूल के मालिक के हिरासत में वठी छो। डीसी पेशावर चाहिए तो मलबे हेठा दबियल समूरन शागिर्दन उस्तादन के बाहर कढ़ी वो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ए बन पारा फोतल शागिर्दन के वालदेन से दुख जो इजहार। जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू दियण की हिदायत। स्कूल के मलबे में समूरन बारन के कढ़ी वरतो है। घिटियों सोड़ी होजन सबब इमदादी कार्रवाई में दुखियाई पेश थी। केपीए के सलाहकार समर हारून बिलोर चाहिए है तो जिंदगी जो को भी मुतबादिल ना है, फोतन के वारसन की मदद कई वेंदी। सीसीपीओ पेशावर चाहिए है तो साने के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल किया वेंदो।

0: 114 members rose in favor of the motion. Six members rose against the motion.
1: पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज एमरजेंसी की मंजूरी दई छी। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत हेठ पार्लियामेंट जो गडियल इजलास वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी केपीए में एमरजेंसी ए गवर्नर राज वारो हुकुम पार्लियामेंट में पेश कयो। रिथ की हिमायत में 214 मुखालफत में 56 वोट पिया। अपोजिशन सख्त इतजाज कयो। कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तारण चयो त वफाकी हुकूमत समूरा कदम आईन ए कानून मूजिब खणी रही है।

सिंध हुकूमत जी चीन जे शहर शिंगाई में सीड़पकारी कॉन्फ्रेंस जारी। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमुण ऐं ॿिया शरीफ। कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा 400 सीड़पकार बि मौजूदु। मुराद अली शाह चयो आहे त कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया जे सीड़पकारनि खे सिंध में सीड़पकारीअ लाइ मनसूबा पेश कया वेंदा। सिंध हुकूमत ऐं चीनी सीड़पकारनि विच में 16 मुआहिदनि ते बि सहियूं थियूं आहिनि। सिंध हुकूमत सीड़पकारनि खे सहूलियतूं ॾींदी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब ज़िले वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस गुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारती प्राक्सी फितनल हिंदुस्तान जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मस्तोंग में कार्रवाई दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया। 104 अफ़गान शहरी गिरफ़्तार। तुर्बत में इंसानी स्मगलिंग जी करप्शन नाकाम बणाई वई। 104 अफ़गानी शहरी गिरफ़्तार कया विया।

जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट जो वक्ती चीफ जस्टिस तौर हलफ खणी वरतो। जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस मुनीब अख्तर का हलफ खणायो। चीफ जस्टिस यया आफरीदी निजी दौरे ते इंग्लैंड वयल 21 अक्टूबर ते वापस इंदो। हलफ बरदारी तकरीब में जजेस ए सीनियर वकीलन शिरकत कई। मीर रजा केस लाए अदालती कमीशन की रिपोर्ट सिंध हुकूमत हवाले। कमीशन जो चवण है त रिपोर्ट घरू खाते हवाले कई वही है। अदालती कमीशन 15 बुधन दौरान 49 जन जा बयान रिकॉर्ड कया। मीर रजा जो लाश 29 जुलाई से गुलिस्तान जोहर में मिलो। पिथौरो में कार सवार हथियारबंदन बिन जणन के कतल करे छडियो। सूफी फकीर थाने जे हद में कार सवार हथियारबंदन मोटरसाइकिल सवार बिन नौजवान के कतल कयो। पुलिस मूजिब बई मकतूल मरी बिरादरी जा बुधाया पिया वञन। वाक्यो छो पेश आयो वधीक जांच करे रहा आयूं। खेरापुर में मोटरसाइकिल फुर्जी वधंदड़ वारदातुन ए बदमनी खिलाफ कौमी शाहरा ते टायर सारे धरणो। शहरन ओल्ड नेशनल हाईवे ते भुरगड़ी पुल वट एतजाजी मुजाहिरो करे टायर सारे धरणो आयो। संदन चवण आए त फुर थियल मोटरसाइकिल वापस कराए जवाबदारन के गिरफ्तार करे अमन बहाल कराए वञे।

सिंध के मुख्तलिफ शहर में प्राइमरी उस्ताद जो एतजाज जारी। दादू तलार ए कुनरी में पेटीएल के सद से मुतालबन की मंजता ला एतजाज। तलार में प्राइमरी उस्ताद सर्विस स्ट्रक्चर ए बन मसलन के हल ला प्रेस क्लब अगैं कैंप कायम कर छी। कुनरी में भी प्राइमरी उस्ताद मुतालबन की मंजता ला अलामती भुख हड़ताल कायम कई का।

भान सैदाबाद में गोठ मालो खान बबर के रहवासन जो सेवण ए झांगारा पुलिस खिलाफ एहतजाज गोठण जो चवण है त सेवण ए झांगारा पुलिस बिना जवाज हिरासा करे कूड़न केसन में फसाए रही है। सियासी चुर्ज ते रुकण पुलिस सेवण ए झांगारा थाणन ते शक खां वधीक कूड़ा केस दाखिल कया विया आहिनि। इंसाफ़ कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
4: Super White!
5: Aap sun rahe hain.
6: Aap sun rahe hain.
5: GAFM. GAFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
7: ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन बेहरापुर मातली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया, लेकिन अब आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को जो बताने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप लोगों के लिए कितने सारे फायदे छुपे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप तमाम से लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उन्हीं सेम नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं जो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं। तो नंबर सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बात है कि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनको अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप रब्ता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है जनाब, उसके अलावा व्हाइट एश ब्यूटी सोप है, व्हाइट एश का फेस वॉश है, और साथ साथ व्हाइट एश की डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है। जी बिल्कुल, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, उसके अलावा व्हाइट एश लवली क्रीम है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तमाम प्रोडक्ट जो है ना अपना अपना काम करते हैं। मतलब ऐसे कि अगर आपको चाहिए कोई ऐसी नाइट क्रीम जो कि भाई आप लोगों को रिफ्रेश बना दे, आपकी स्किन को अच्छा सा लुक दे दे, आपके चेहरे पर जो है ना व्हाइटनिंग ला दे, तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है, अगर आपको चाहिए कोई लाइट सा प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करें अपनी हर स्किन टोन के ऊपर, तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सोप इस्तेमाल करने वाली समाते हैं, साबुन लगाना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए व्हाइट एश का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। क्योंकि व्हाइट एश का ब्यूटी सोप जो है ये भाई व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको व्हाइट एश का ब्यूटी सोप भी परचेज करना चाहिए। वैसे ये आप लोगों के लिए एक ऐसा सोप हो सकता है जैसे आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। मोस्टली जैसे आप घर में कोई भी साबुन का यूज करते हैं तो सारे लोग ही व्हाइट एश का ब्यूटी सोप जो है ना लगा सकते हैं। ये बहुत ही मिल्की सा सोप इतना कमाल का आपकी स्किन को बना देगा, इतना सॉफ्ट सा ग्लोइंग सा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको व्हाइट एश का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो व्हाइट एश का जो फेस वॉश है ना, उसकी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार रखा गया है। वैसे तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्रीमी सा लुक चाहिए और मिल्की सा लुक चाहिए तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम और व्हाइट एश का जो है ना वो साबुन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों के चेहरे पर विटामिन सी की कमी है, या फिर आपके चेहरे पर आपको चाहिए कि भाई, या ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा क्रेज भी होता है कि हम विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो आपके लिए व्हाइट एश का विटामिन सी फेस वॉश मौजूद है। और व्हाइट एश का जो विटामिन सी फेस वॉश है ना, ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और साथ साथ ये बड़ा क्रीमी सा फेस वॉश है, तो इसका इस्तेमाल भी आप सब लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं जाना, यानी कि ऐसा होता है कुछ लोगों की घूमने फिरने की बड़ी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, तो अगर आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है तो आप व्हाइट एश का जो फेस वॉश है ना, ये आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा जो है इसको आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की बात आती है, तो जिन लोगों के चेहरे पर बड़े एक्नी होते हैं ना, एक्नी को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है आपने बड़ी सी ट्रीटमेंट करवा रखी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से ऐसा होता है, मुझे लगता है कि फायदा जो है ना आपको थोड़ा सा वक्ती तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। इतने प्रोडक्ट जो है ना, बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स के जब चक्कर लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए और कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी एक्नी की ट्रीटमेंट कर सके, एक्नी से फाइट कर सके, तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है। अच्छा हाँ, ये जो है ना, आप लोगों को नाम जरा याद करना है इसका, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट एश का ये जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, इसका नाम आपको आना चाहिए। एक तो ये है कि भाई ये व्हाइट एश का आप एक्नी ट्यूब कह सकते हैं, दूसरा ये कि आपको ये नाम होना चाहिए क्योंकि ये आसान है मुझे लगता है नाम के, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। ये डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल दुकानदार दे देंगे, और ये जनाब बहुत ही कमाल का ट्यूब है। ये बिल्कुल ये ट्यूब है, अगर आप कोई अच्छा सा एक्नी ट्यूब लेना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे
डॉक्टर पिंपल, एंटी एक्ने ट्यूब तो आपके चेहरे पर जितनी भी एक्नी है या फिर जो बैक्टीरिया आपके फेस पर जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से एक्नी बनते हैं, उनसे आपके चेहरे पर छुटकारा हो जाएगा। आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो खत्म हो जाएगा। एक्नी मार्क्स हैं या फिर ब्लैक पॉट्स हैं, व्हाइट हेड्स से हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और बेदाग हो जाती है और आपके चेहरे पर जो है सारे एक्नी का खात्मा हो जाता है। उनका अलावा जेको असां वटि व्हाइट एसी लवली क्रीम भी मौजूद है। मां तव्हांखे आराम आराम सां सभिनी प्रोडक्ट्स जे बारे में ॿुधाईंदा, पर खोड़ सारा ॾींहं थी विया न त तव्हां खां थोरो विसरी वियो हूंदो। इन लाइ मां तव्हांखे सभिनी प्रोडक्ट जो डिस्क्लेमर ॾींदी अचां थी त कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि, उन्हनि खे तव्हां कीअं कीअं लॻाए सघो था। बाक़ी हा डिटेल्स तव्हां सां बिल्कुलु शेयर कंदासीं। अगरि तव्हां इस्तेमाल कंदा व्हाइट एस जा प्रोडक्ट त तव्हांखे ख़बर हुजे जेको बि प्रोडक्ट तव्हां लॻायो था उनजो रिज़ल्ट छा मिलंदो तव्हांखे, उहो तव्हां छो लॻायो पिया। सो अगर व्हाइट एस जी लवली क्रीम जी असां ॻाल्हि कयूं था त व्हाइट एस जो जेको लवली फार्मूलो आहे न, ही ॾाढो ज़बरदस्त ऐं कमाल जो फार्मूलो आहे बाबा। ही लवली क्रीम आहे जेका तव्हां मतिलबु ॾींहं जो बि लॻाए सघो था ऐं कंहिं फंक्शन में वञो था, पार्टी आहे या फिर जेकी कॉलेज वेंदियूं छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि या तव्हां जेका जॉब आहे, तव्हां स्कूल वञो था या कोई भी तव्हांजो कमु आहे, तव्हांजे पर्स में बस व्हाइट एस लवली क्रीम हुजे, यानी कि सफ़ा मेकअप वारो फार्मूलो अची वेंदो तव्हांजे चेहरे ते ऐं तव्हांखे ख़बर पवंदी त एतिरो ज़बरदस्त हिकिड़ी लवली क्रीम तव्हांखे निखार ॾे पई त तव्हां उनखे इस्तेमालु करे पंहिंजी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था। व्हाइट एस जी जेका लवली क्रीम आहे न बाबा, रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स एड कया विया आहिनि। इन लाइ एड कया विया आहिनि त तव्हांजी स्किन ते जेके वाइटमिन्स जी कमी हूंदी आहे न उहा पूरी थींदी रहे। वाइटमिन्स की कमी जब पूरी होती रहेगी तो आपके चेहरे पर निखार और खूबसूरती तो खुद ब खुद आता जाएगा। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम ये एक फेयरनेस फार्मूला है। जो लोग फेयरनेस क्रीमें लगाना पसंद करते हैं या जिनके चेहरे पर ऐसा होता है कि आप मेकअप नहीं लगा पाते, मेकअप से ऐसा होता है ना कि भाई आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है, खास करके सेंसिटिव स्किन वालों, तो मेकअप अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं करता तो बस सिर्फ आप जो है व्हाइट एज लवली क्रीम लगा लीजिए, आप मिनटों में रेडी हो जाएंगे, चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एज लवली क्रीम से मिलने वाला है। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम तो बिल्कुल आप लगाएंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियां आ रही है तो व्हाइट एज का जो है ना वो आपके लिए लोशन भी मौजूद है। और लोशन जो है ये भाई ट्रिपल विटामिंस का फार्मूला है और ये बड़ा आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा। तो जिन लोगों को लोशन चाहिए होता है, खास करके हमारे चाचे को, तो चाचे को जो हमारा लोशन चाहिए तो वो आप जो है व्हाइट एज का लोशन ले सकते हैं जो कि ट्रिपल विटामिन से बना हुआ है और इसके अलावा आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा। और साथ साथ जो है ना हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि व्हाइट एज के अंदर मौजूद है। 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। एक लेमन का वेरिएंट है, दूसरा जो है वो जनाब रोज का वेरिएंट है और तीसरा खीरे का वेरिएंट है। ये तमाम चीजें हैं व्हाइट एज के, मतलब मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है ताकि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो, बस आप जाएं और अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट परचेज करें और खूबसूरती का जो है ना दरवाजा आपको मिल जाए कि अब हमने खूबसूरत होना है, बस ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट है और अब हम इसे लगाएंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से व्हाइट एज के ये तमाम प्रोडक्ट्स लगाइए, आप पिक कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट आइए और कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के हिसाब से है। जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइट एज सोप हो, व्हाइट एज का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम हो या फिर लोशन ही क्यों ना हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाएंगे, आपको हसीन प्यारा खूबसूरत बना देंगे। ये जनाब लगाने के लिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मंगाने के लिए आपको जो नंबर्स बताए जाते हैं उनके ऊपर भी रابطہ रखा करें और कॉल या फिर मैसेज करके उनको बता देंगे आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज की तमाम रेंज को। और डायल कीजिए 0332738 4309। बुड़ी 332 73 84 309। बो नंबर आ 03-12-50-25-907। बुड़ी 312 50-25-907।

ने ॾाढो भलो गानो हलायो आहे होमेरा चन्ना जी आवाज़ में सहरो आहे वैसे ही सहरो असांखे हिदायत अला फरमाइश कई अलाए कंहिंजी शादी थो कराए तव्हांजी त नथी थिए न मतां थी बि सघे थो थींदी जे छो त तव्हां असांजा प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कया आहे चाहे उहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी वाइट एज जा प्रोडक्ट्स हुजनि बाबा जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांखे ख़बर पवंदी त वाक़ई ख़ूबसूरती किथे लिकियल हुई अच्छा हिते पैनल जी तरफ़ अचूं था त तव्हांजा खोड़ सारा मैसेजेस जमा थी विया आहिनि सो पढ़ी वठंदासीं

हमारे साथ यहाँ पर महबूब अली मोरो सिटी से कहते अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान कुंज माशाल्लाह आपका प्रोग्राम और क्या बात है स्टार्टिंग जीती रहो सदा दिल खुश हो जाता है आपको सुनकर सो नाइस ऑफ यू थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना बहुत आसा की मोरो में ज्वाइन किया है और मोरो से अजहर अली भट्टी भाई है और आप हमें सुन रहे हैं जी सॉन्ग शाहिद अली बबर का सुनना चाहते मैं कोशिश क्या थी तो गानों हलाई अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थिबू का हबीबुल्ला थिबू के आरजे सिद्रा मुस्कान शो तहां जो मेरी मेरी नाइस आई सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम तवां के सजाद रुस्तमानी भाई हमें मातली से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको वेलकम एंड खुशामदीद अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ब्यूटीफुल है मैं और मेरी पूरी जो फैमिली ना वो यूज करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है सॉन्ग आपकी पसंद का एंड सिंगर हमारी पसंद सिंगर फैजाली डेडिकेट आपको और डेडिकेट किया है नोरीन कराची वाली को डेडिकेट चाचा को डेडिकेट वाह सही वाह सही गोले गोले डेडिकेट क्यों थे अब्दुल्ला भाई आपको वेलकम कहते ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और बाकी जो लोग व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए शहजाद अली राजपर फ्रॉम बसीरो वालेकुम अस्सलाम अदी सदा की आई हो अल्लाह आपको खुश रखे प्रोग्राम इज वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना भात आज मोहब्बत हुआ है और मोरो से महबूब अली भाई तमाम ही चाहिए बाबा मोरो जी जो रेडियो ते प्रोग्राम थोड़ो सही न पो हले इन लाइ मूं मैसेज करे छो आए अल्लाह कंदो सही थी चाचा कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल चाचा तांजो गानो हलाए बैठूं था मकसद मना हमें सुन रही है मेहरापुर से कहते हेलो हेलो जी मैं भी तो आपका शो सुन रहा हूं और जी बड़ी बड़े लोग आदाब से सारे ये आपने शायद शायरी लिखी लेकिन शायरी की टांगे वांगे तोड़ दी आपने तो इसको हम पढ़ना जो है ना वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं बाकी चौथा सिद्रा मुस्कान जी सिंधी मुझे भली आए छोटो का जो कंधा आए मुझे सिंधी थे और हमारे साथ जीपाल भाके थे टॉपिक भाव जी बचपन में एक गलती हुई थी तो मेरे पप्पा जी ने हुक्का पानी बंद कर दिया था मैंने पूछा कितने दिन मंथ के लिए हमारे मॉम ने साथ दिया एक मंथ खर्चा बंद किया वक्त था वो भी क्या बात है जी मेरे को लगा खाना पीना बंद कर दिया लेकिन खर्ची बंद सही सही खर्ची टेंशन ना है बाबा खाना पीना बंद हो जाए तो वो जरा मुश्किल वाली बात हो जाएगी और आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए ठीक है जयपाल भाई और मुझे बताएं खुशी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और फजली हमारे साथ कहती वालेकुम अस्सलाम हैप्पी हैप्पी आफ्टरनून और माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी कैसी हो मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स टॉपिक डियर स्वीटी मुझे ऐसी कोई सजा नहीं मिली थी बचपन में मैं सबकी लाडली रही हूँ जाना ओके आप रहिए बाकी तो सब नहीं रहे होंगे ना

हाँ भाई मुखे न ही दरअसल असांजे किशोर भाई के भाभी मिली हुई जंहिंजी तबियत जेका आहे उहा फकीराणी आहे असांजी भाभी वाकई ॾाढी भली आहे भली इन लाइ आहे छो त हूअ वाइटी सां प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदी आहे न वैसे तबियत में भाभी ॾाढी भली आहे अला साईं ख़ुशि रखे तव्हां मुंहिंजी जोड़ी सलामत हुजे ऐं तव्हां ईअं ई असांजा प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा रहो हुन खां अलावा जिन माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर नाहे कयो बाबा छो कंजूसियूं कंदा आहियो असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जवेरिया असांजो प्रोग्राम हुते पई लाड़काणे खां जवेरिया तव्हांखे चवंदा भली करे आया और हमारी प्यारी दिल रुबा भी हमारे साथ मौजूद और मौजूद ही जी ये वालेकुम असलाम सिदराबाद जी में मंसूर अली अकरो शरीफ से टॉपिक आंसर में स्कूल में नहीं जाता था तो सजा मिलती थी सलाम अनोमान और जुनेद हिंगोरजा राशिद शाह को और अहमद मुगल का गाना सुना दीजिएगा शो शो आपका बड़ा वीआईपी हो रहा है ओके जी बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं

वाह साई वाह गानो बुधो था सभी के गानो वणे पो और निसार मोलाई भा तवा के भी प्रोग्राम वणे पो पर मुख्य हाल अहवाल दियो तुम वाई टी सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कना को हाँ तुम सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स मु ठाराया यानी के तांके फेस वॉश वठणो आ तां वाई टी जो फेस वॉश लगाए सको था साबुन हणदा आ तां वाई टी जो साबुन लगाए सको था वाई टी सी ब्यूटी क्रीम भी है जनाब नाइट क्रीम अगर तुम इस्तेमाल करना चाहता कोई सुठो फार्मूलो हल्को फार्मूलो जिनके अंदर खीर हो एवोकाडो हो एलोवेरा हो वाई टी सी ब्यूटी क्रीम मौजूद है वरी कंखे एक्नी प्रॉब्लम आ दाणा नथा छडन तवा जे लाए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ठारायो थी मां वरी कंखे कोई फेयरनेस क्रीम लगाणी आ जेका ता डीन जो लगाए मेकअप जी जरूरत तवा के न पए त तवा जे लाए वाइट एसी लवली क्रीम ठाराई थी मां ये सब प्रोडक्ट्स ता वनो पाजे करीबी जनरल स्टोर ता वनी वठी अचो ए सब प्रोडक्ट ता के मुनासिब पैसन में मिलंदा ई मुनासिब पैसन सा गडो गड पाजे स्किन जे लाए डाडा फायदेमंद आ छो त ही सब जेके प्रोडक्ट्स आ नेचुरल अजा से तैयार थेल आ विटामिंस जो भरपूर फार्मूलो आ सो लगाईंदा रहो ता मर्द मायो सबनी चले आयन बाबा खूबसूरती हासिल करने सबनी जो हक है सो बोलो बाबा साडा हक एते रख।

0: ताली वैसे लगाई भा ये गानो हले पे शमन जो एंजॉय करी बैठो मुगल उमरानी भा से गड मौजूद आए थैंक यू हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा वेलकम के दे तमाम को और नजर मोहम्मद भट्टी भाई है हेलो जी मैं ठीक हूँ तामुदा किया है आतिफ असलम का गाना सुनना चाहते हैं मटियारी से आपने मुझे ज्वाइन किया है मैं आपको वेलकम कहती हूँ आपका गाना लगा देगा और नखा अलावा
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अरे न खुश ऐ बेरोनो की स्किन हण इने जलाई छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू की तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेहे में आहिन चार अंजु खूबियो ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ऐ चामरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
4: आप सुन रहे हैं
5: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ये बात मुझे समझ नहीं आई, वाकई बैंक क्यों खोले, लख लुटाया सोने ता आखे शो सोने डो कहीं चाहे सोनो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाया पो गाल समझ में चाहिए सोने की चो बाबा व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाए सही है।

में गाने जी करते थे अब उधर सुमाटू ने गाने जी फरमाइश किया बिल्कुल गानों मजेदार है पर गाना बुधा सिंह गरुगर तुम्हारा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना था मजो अची वे अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जी तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल को नंबर बुधाई जिसे तुम राबतों करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल भी कराए सको था सो जनाब नंबर जो नोट करी वो अगर अना तुम को सो नंबर है 3834 0934 9079 जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो जो भी प्रोडक्ट तुम लगे तो ही प्रोडक्ट असाजे हिसाब वो है तुम उनके परचेज कर इस्तेमाल कर ठीक है तुम्हें सफा भला रिजल्ट मिलता रहा तुम सोना सोना थींदा रहंदा।

जयपाल भाई हमारे साथ हैं। जयपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही आप व्हाइटिश की लवली क्रीम लगाते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इजाफा ला देगा। ठीक है ठीक है। और ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा, आप कैसी हो? माय नेम इज तहमीना आपी, एक राज की बात बताओ। अच्छा कहती है कि जब आप सिंधी बोलती हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आप सिंधी बोल रही हैं। आप बहुत ही कमाल कमाल की आ रही हैं। और टॉपिक का जवाब है कि जब बचपन में अम्मी कुछ कहती थी तो समझ ही नहीं आती थी तो अम्मी चांटा मारती थी। ओके उन्हें जो कोई असर नहीं लगे तो हले तो आई तुम तमीना ब मैसेज कया नहीं सेम तुम ब मैसेज अच्छी हुआ ना असे पेनल से। सो थैंक यू सो मच सोनी तहां से सगर मौजूद है ताजो मोहब्बत हुआ बाबा ये कदें कदें पांजे हुजन जो सबूत दई छड़ींदा कयो। और हमारे साथ है जुलरी का खालिक लाशारी शो वीआईपी आए, थैंक यू वेरी मच खालिक भा। अच्छा मैं कोशिश क्या थी लास्ट में का जयपाल भाई पोइट्री तांके बुधाए वठनम दिसा टाइम बची होते हते इलाही सारा कमेंट जमा थी वाना ली मते भजंदा था वन ओ ये भजंदा था वन। अच्छा हमारे साथ है गुल यासी नाज भाई, आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हाँ लोशन में लगाऊंगा, बिल्कुल आप लोशन जाइएगा परचेज कीजिएगा व्हाइटिश का, आपको लोशन मिल रहा है, बहुत ही कमाल का लोशन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि या तारिक भाई को बोल दें भाई, तारिक भाई को बोल दें, तारिक भाई आपको पहुंचा दे के घर बैठे। और गदा हुसैन कहते हैं के वन्य अच्छा कहते हैं आज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई मुझी शादी थी रही आहे कल आपने दुआ की काम दिखा दिया। भाई आपकी दुआ दिसो मुझी दुआ के लिए फास्ट सर्विस वाकई मुझी दुआ असर कंदी था दिसो ता कल मुखे चयो दादी मुझी शादी न पई थी।

आते शादी वाले गाने सुनकर मजा ही आ जाता है। मोहम्मद जमान भाई जियो करे इससे। दर्दे दिल कहती है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। अच्छा एसन अली भुक्ति हमें लारकाना से सुन रही है। एसन भाई आपको वेलकम हो गया। फराज डहरी सुन रहे हैं, कहते हैं मजहर और मजहर की तरफ से सलाम। सो वालेकुम अस्सलाम दोनों भाइयों। अच्छा अख्तियार अली गबे हैं।

धंधा आयो है जिमी तवाके खूबसूरती जा राज भी बुदाया वेना इन किशोर भाई कहते हैं कि मोते कावर कर हां बेहतर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ओ इहा गाल लेकिन आपने मेरा एक भी मैसेज नहीं आपने सुने नहीं होंगे अपने मैसेज तो प्रोग्राम जब मैं कर लू ना तो फेसबुक पर हमारी ये पोस्ट हुई ना उस पर सारी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है तो आप वो सुन लीजिएगा ठीक है। दर्दे दिल कहती है कि मैं बहुत मासूम थी तो मुझे कोई सजा नहीं अच्छा चाचा है ना वो एड़ो गानों जो पंज बजे वाले प्रोग्राम बुधना सिंह ठीक है चोरी समझी उन्होंने

बाबा यो केड़ो प्यारा तुम्हा वाइट एज का प्रोडक्ट कौन बैठो ये मोहब्बतों ना आयन बाबा मोहब्बतों दोनों तरफ से निभाई जाता थी रम पंच बजे प्रोग्राम फरमाइश कुंदा कर और फराज डेरी कहते हैं क्या कमाल की क्रीम है हाँ ना वही तो बताते हो बस अलग आला तो वहाँ लगाई ना है लगाए ने सो सोना थी अच्छा फहीम शेख भी आ चुके हैं फहीम भाई कहते हैं कि खुद में खामियां है और दूसरों से जलते हैं चेहरे धो नहीं सकते आईने

वापसि ईंदो। हलफ बरदारी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शिरकत कई। छंजी रिपोर्ट सिंध हवाले चवण आहे त रिपोर्ट घरू खाते हवाले गुलिस्तान जो हथियारबंद ॿिनि ॼणनि खे ॾियो। सारस वारा हथियारबंदनि मोटर

0: टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
0: सुपर वाइट
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: सुठी स्किन और इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे ब्लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye, skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile, chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पार्लियामेंट के गडियल इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज एमरजेंसी वाले रिथ से बहस जारी। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत हेठ पार्लियामेंट जो गडियल इजलास वफाक वजीर तारिक फजल चौधरी केपीए में एमरजेंसी गवर्नर राज वारो हुकुम पार्लियामेंट में पेश कयो। रिथ से बहस की हिमायत में 214 मुखालफत में 56 वोट पया। अपोजिशन जो सख्त एहतजाज कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ चयो आहे त वफाकी हुकूमत समूरा कदम आइन ऐं कानून मूजिब खणी रही आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त पार्लियामेंटेनर केपीए में एमरजेंसी वारी रिथ मंजूर करण बदिरां रद्द कनि। श्री रहमान चयो त सूबो वफ़ाक सां टकराव वारी पॉलिसीअ ते नथो ठाहे सघिजे। पार्लियामेंट जे इजलास दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी अपोज़िशन लीडर महमूद खान अचकज़ईअ सां मुलाक़ात। ॿिन्ही अॻवाननि हथ मिलाइण बैदि मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल बि कई। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ सां मुलाक़ात। केपीए जी सूरत हाल समेत मुल्की सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं।

सिंध हुकूमत की चीन के शहर शिंगाई में सीड़पकारी कॉन्फ्रेंस जारी। वो वजीर सैयद मुराद शाह, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण बिया शरीक। कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क 400 सीड़पकार भी मौजूद। मुराद अली शाह है कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया के सीड़पकार के सिंध में सीड़पकारी ला मनसूबा पेश क्या वा। सिंध हुकूमत ए चीनी सीड़पकार विच में 16 मुआदन से सयू थी। सिंध हुकूमत सीड़पकार के सहूलतू दी। रूसी घरू वजीर पाकिस्तान जो 4 दिन वारो दौरो मुकमल करण बद रवानो। घरू वजीर मोहसिन नकवी हमन सब के एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। मोहसिन नकवी चयो त रूसी घरू वजीर जो दौरो पाक फौज पाक रूस लागापन के अगभराई थींदी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मार जी विया। ISPR मूजिब जिले वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस गुजे इतला ते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय प्राक्सी फितनों हिंदुस्तान जा 5 दहशतगर्द मार जी विया। सिक्योरिटी जरियन मूजिब मस्तोंग में कार्रवाई दौरान 2 दहशतगर्द मार जी विया, जडे त 104 अफगान शहरी गिरफ्तार। तुर्बत में इंसानी स्मगलिंग जी कोशिश नाकाम बनाई वही। 104 अफगान शहरी गिरफ्तार कया विया। अमेरिका ईरान खिलाफ मदर ऑफ वाल पंप्स इस्तेमाल करण ते गौर शुरू करे छड्यो। ईरान जे तवानाई एटमी मागन के निशान बणायो वेंदो। अमेरिकी खबरू इदारे CNN जे दावा CNN रिपोर्ट में चयो आहे त पेंटागन तेहरान खिलाफ़ नए फौजी कार्रवाई जो मनसूबो तयार करे वरितो आहे। अमेरिकी फौज खे ईरान ते हमले लाइ ट्रंप जी हतमी मंज़ूरीअ जो इंतज़ारु आहे। ॿीहर जंग शुरू थियण ते पेंटागन पहिरियों भेरो तेहरान खिलाफ़ मदर ऑफ वाल पंप्स जो इस्तेमालु कंदो। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट जो वक्ती चीफ जस्टिस तौर हलफ खणी वरतो। जस्टिस जमाल मंदो खेल जस्टिस मुनीब अख्तर का हलफ खणायो। चीफ जस्टिस याया आफरीदी निजी दौरे ते इंग्लैंड वयल। 21 अक्टूबर ते वापस इंदो। हलफ बरदारी तकरीब में जजिस ए सीनियर वकीलन शिरकत कई। मीर रज़ा केस लाइ अदालती कमीशन जी रिपोर्ट सिंध हुकूमत हवाले। कमीशन जो चवण आहे त रिपोर्ट घरू खाते हवाले कई वई आहे। अदालती कमीशन 15 ॿुधणियुनि दौरान 49 ॼणनि जा बयान रिकॉर्ड कया। मीर रज़ा जो लाश 29 जुलाई ते गुलिस्तान जोहर मां मिलियो। पिथोरो में कार सवार हथियारबंदन अदालती पेशीअ तां वापसी ईंदड़ ॿिनि ॼणनि खे क़तल करे छॾियो। सूफ़ी फ़क़ीर थाणे जे हद में कार सवार हथियारबंदन फायरिंग करे ॿिनि नौजवाननि खे क़तल कयो। पुलिस मूजिब मक़तूलनि जी सुञाणप वलीदाद ऐं मौला बख़्श मरीअ जे नालनि सां थी आहे। वाकियो शर ऐं मरी धुरियुनि में हलंदड़ तकरार सां पेश आयो आहे।

ऐं कुनरीअ में पेटियल जे सॾ ते मुतालबनि जे मञता लाइ एहतजाज कयो वियो। उस्ताद अॻवाणनि पारां हुकूमत ऐं सर्विस स्ट्रक्चर समेत जाइज़ मुतालबा तस्लीम करण जो मुतालबो। खेरापुर में मोटरसाइकिल फुरजी वधंदड़ वारदातुनि ऐं बदमनीअ ख़िलाफ़ क़ौमी शाहराह ते टायर साड़े धरणो। शहरनि ओल्ड नेशनल हाईवे ते भुरगड़ी पुल वटि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे टायर साड़े धरणो हयो। संदन चवण आहे त फुर थियल मोटरसाइकिल वापसि कराए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे अमन अमान बहाल करायो वञे। भान सैदाबाद में ॻोठ मालो खान बपर जे रहवासियुनि जो सेवण ऐं झांगारा पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठाणनि जो चवण आहे त सेवण ऐं झांगारा पुलिस बिना जवाब हिरासा करे कूड़नि केसनि में फासाए रही आहे। सियासी चुर्च ते सेवण ऐं झांगारा थाणनि ते शक खां वधीक कूड़ा केस दाख़िल कया विया आहिनि। इंसाफ कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by अक्सा Cosmetics पाकिस्तान
2: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खुश्क ऐं बेरोनक जी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे ब्लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ

0: असली ग्लो हर दिन का शो
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम रोजान नव लगी टंते सिर्फ
2: जी 8 नेटवर्क से जुड़ा
3: GFM नेटवर्क आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज,
1: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ऐं बेरोन की स्किन हण इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे ब्लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे

0: मिले वृद्धि की खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सर कॉस्मेटिक्स।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हुकूमत ऐं चीनी सीड़पकारनि विच में 16 मुआहिदनि ते बि सहियूं थियूं आहिनि। सिंध हुकूमत सीड़पकारी खे सहूलियतूं ॾींदी। सऊदी इतिहाद पारां मदीने तरफ़ हुसैन जो फायर कयल मिज़ाइल तबाह करण जी दावा, यानी यमनी हुसैन सऊदी इतिहाद जी दावा रद्द करे छॾी। सऊदी फ़ौजी इतिहाद मूजिबि हुसैन पारां मदीने तरफ़ फायर कयल मिज़ाइल खे नाकारा बणायो वियो आहे। ओभर रीजन में हिकु ड्रोन खे बि तबाह कयो आहे। हुसैन सऊदी जे इल्ज़ाम खे कूड़ो करार ॾींदे रद्द करे छॾियो। हुसैन जे तर्जुमान चयो आहे त मदीने ॾांहुं को मिज़ाइल फायर नाहे कयो। रियाज़ में शाह ख़ालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते मिज़ाइल हमलो कयो आहे। अमरीका ईरान ख़िलाफ़ मदर ऑफ ऑल बम्स इस्तेमाल करण ते होर शुरू करे छॾियो। ईरान जी तवानाई ऐं एटमी वाघनि खे निशानो बणायो वेंदो, अमरीकी ख़बरू इदारे CNN जी दावा। CNN पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त पेंटागॉन तेहरान ख़िलाफ़ नई फ़ौजी कार्रवाई जो मनसूबो तयारु करे वरितो आहे। अमरीकी फ़ौज खे ईरान ते हमलनि लाइ ट्रंप जी हतमी मंज़ूरी जो इंतज़ारु आहे। ॿीहर जंग शुरू थी त पेंटागॉन पहिरियों भेरो तेहरान ख़िलाफ़ मदर ऑफ ऑल बम्स जो इस्तेमालु कंदो। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब ज़िले वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेज गुझे इतलाते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मस्तुंग में कार्रवाई दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया। 104 अफ़गान शहरी गिरफ़्तार। तुर्बत में इंसानी स्मगलिंग जी कोशिश नाकाम बणाए 104 अफ़गान शहरी गिरफ़्तार कया विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।